अपना जो फर्द पछाने दिल है शीशे का खिलौना दिल है शीशे का खिलौना टुटिया फिर रात नहीं आना दिल है शीशे का खिलौना टुटिया फिर रात नहीं आना।

0: मसले दा हल चाहुंदे हो
1: की तुहाडा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है
0: तां फिर अज ही मिलो जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस नूं
1: सुखप्रीत कौर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस न्यूजीलैंड रेजिडेंस स्टडी वीजा वर्क वीजा या डेपोटेशन सेक्शन 61 मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील कॉल 211-825-718
0: 211-825-718
2: या फिर विजिट करो लेवल 1-706 ग्रेट साउथ रोड पेनरोज ऑकलैंड
0: विस्टर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है
3: मदर्स डे दे खास मौके ते ग्लिटर ज्वेलर्स ने लगा दी है सेल ते तुहाडे लिए ले आए ने शानदार स्पेशल 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते सिल्वर ज्वेलरी दे उते बहुत सारे स्पेशल ग्लिटर ज्वेलर्स जो कि 2x216 ग्रेट साउथ रोड मेनरेवा दे विच स्थित ने हर रोज सवेरे 10 बजे तो लैके 5:30 बजे तक तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहिंदे ने नेक्स्ट टू SB बैंक फोन 022-44-00-00 ते ना फेसबुक ना ट्विटर ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਟਰ
4: ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 5 ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਪੈਮਬਰੋਕ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ ਗ੍ਰੇ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਡੋਟੂਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਡਿਸਡੇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਵਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07839-0092 07839-0092
5: अच्छा अच्छा ताए साथ

कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहबा गैर गंभीरा गुनी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कुमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंग्याईया, सिद्धां पुरखां किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने नहीं पाईया, करम मिले ना ही ठाकर हाईया। आखन वाला किया विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवार नहारा। आसा मल्ला पहला, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरे मेरी माय, साचा साहेब साचे नाय। रहाओ साचे नाम की तिलवड़े आई, आखत के कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखन पाए, वड़ा ना होवे काट न जाए। ना ओ मरे ना होवे सोग, देदार है ना चुके भोग। गुण इहो होर नाई कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड़ आप

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा अनंत कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया स्तुजो करियो रच्छा।

अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वे सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी, कर मैना केहो सब तोय बखान्यो, दोयरा सगल।

सतगुरु प्रसाद राम कली मल्ला तीजा आनंद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजिया वधाइया राव रतन परवार प्रिया शब्द गावने आया सब दोता गावो हरि कीरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारे सब सवारना सम नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे सहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफ सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वड़ियाइया कहे नानक सुरों संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला च कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुजन को सह नाम हर कह लागे कह नानक तैसुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद।

संत साजन तै सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे मधाम नी महला पंजवा हाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे।

0: फ्लैटबुश पापा कूरा विच अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस तो बाद हुन डीएच सुपरमार्केट आ गया है हेंडरसन विच हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स ऑथेंटिक स्पाइसेस ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा इक्की छत थले ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर डीएच सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है डीएच सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एफ हेंडरसन इना दी नवी ब्रांच खुल चुकी है
1: ओए राकेश की होया
2: ओए यार मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनू बहुत मिस कर रहा हां
1: ओए उदास ना हो दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू
2: इंडियन खाने दी
1: कमलिया बस इयो गल है चल आपा चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल ने
2: पर कार किथे खड़ी करांगे
1: घबरा ना उथे पार्किंग ले भी वड्डी स्पेस है
3: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ अपने फंक्शंस पे बुकिंग ले कॉल 0926231322
4: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने
5: जदों दे साडे लकी दे एजेंट ने पैसे मारे आ उदों दा साडा ता इमीग्रेशन वालियां तो भरोसा ही उठ गया
6: पर किवियाना इमीग्रेशन उपर तुहाडा भरोसा हमेशा बनया रहेगा क्योंकि ए काम करदे ने पूरी इंटीग्रिटी ते पूरी ट्रांसपेरेंसी नाल चाहे तुसी अप्लाई करनी होवे एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन या फिर तुसी अप्लाई करना होवे किसी भी तरह दा वीजा जिदा कि वर्क वीजा स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा पार्टनरशिप वीजा आज ही संपर्क करो पवनदीप सिंह एंड टीम एट किवियाना इमिग्रेशन कॉल 0220955218 0223288116
7: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है असी थानू दंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह ना सिर्फ वेचना ना के खरीदना सिर्फ रिश्ता बनाउणा ईमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो कॉल करो हारकोर्ट्स मैनुरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढिल्लों 0223049224 या फिर दलजिंदर पांगली 0210564387

0: ध्यान नाल सुनो साउथ ऑकलैंड वाले, साउथ ऑकलैंड मोटर्स लेके आया है बिगेस्ट सेल एवर। हुन गड्डियां दी कीमतां ते वड्डा वार, बिग डील्स, बिग चॉइस, बिग सेविंग्स, हर बजट दी गड्डी लई वड्डी छूट ते बेमिसाल बचत। ए मौका हथों ना जान दियो। 11 मई तो 17 मई तक ही साउथ ऑकलैंड मोटर्स मैनको बॉटली अते पुकीकुई विखे अपनी मनपसंद दी गड्डी घरे ले जाओ सब तो वधिया डील्स दे नाल। विजिट करो southauckland motors.co.nz ते।
1: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
2: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत, मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
1: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
3: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
4: 0272-929-776। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम सफर विच पूरी।
5: मैं अपना वीजा इमिग्रेशन स्टार तो करवाया या। इना ने मेरे पेपर वर्क इतना सॉलिड किया कि मेरा वीजा चार्ट अप्रूव हो गया।
6: जो कहते ने वही करते ने, इमिग्रेशन स्टार वाले भरोसे नाल चलते ने। पिछले 8 साल तो मनाकाओ साउथ ऑकलैंड ची तुहाडी सेवा च हाजिर ते माहिर ने ए एम्प्लॉयर एक्रेडिटेशन,
5: जॉब चेक एप्लीकेशन, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, विजिटर वीजा, स्किल्ड माइग्रेंट रेसिडेंट और वर्क टू रेसिडेंट वीजा अंडर ग्रीन लिस्ट, सेक्शन 61 रिक्वेस्ट वर्गिया सेवावां लई संपर्क करो इमिग्रेशन स्टार दे लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर
6: विनोद जुनेजानू। ओवर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस बी प्रेजेंटेड इंक्लूडिंग सक्सेसफुल ग्रांट ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस। फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही कॉल करो 0225928077 और 0221593477।
7: बस फेसबुक इंस्टा ते रील्स देखी जाओ, इंश्योरेंस ना करायो।
8: ओ डार्लिंग फिकर नॉट, आपा आज ही जाना इंस्टा श्योर। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस सर्विसेज,
7: लाइफ, मेडिकल, ट्रॉमा, आईपी एटसेट्रा फ्रॉम इयर्स। इफ यू आर टायर्ड ऑफ ओवरपेइंग योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस और लुकिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन, गेट इन टच टुडे। कॉल 6422-698-7837। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड।
9: जदों जिंदगी कानूनी चुनौतियां पेश करती है, तां ब्रूक लॉ दे मनिंदर कौर सिद्धू अते उसदी टीम दी महारता ते भरोसा करो।
10: फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, ट्रस्ट, विल्स, एस्टेट एंड इमिग्रेशन लॉ। कानून विच मनिंदर कौर सिद्धू 18 सालों तो वध अनुभव नाल, असी तुहानू हर कदम ते विश्वास नाल मदद करते हां।
9: मनिंदर कौर सिद्धू अते उना दी टीम तुहाडे कानूनी मामलां विच विश्वास योग साथी।
10: brooklaw.co.nz ते जाओ जां 07838-3385 ते कॉल करो।
11: ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ

0: Yes, मैं जीत गया।
1: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर 10, 18 प्लस 7 प्लस 13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
2: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस ज्वाइन करवाया। बेटा 10 24 प्लस 58 प्लस 93 प्लस 76
0: 251।
1: वाह, इन्नी छेती।
3: SIP अबेकस ना बच्चियां दा फोकस, कंसंट्रेशन ते मेंटल मैथ स्पीड स्ट्रांग हुंदा है। पापा टॉय टॉय विच SIP अबेकस दा 10वां न्यूजीलैंड सेंटर खुल रहा है। फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977-9967। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977-9967। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
4: ओए राकेश, की होया?
5: ओए यार, मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है। इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनू बहुत मिस कर रहा।
4: ओए उदास ना हो, दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू?
5: इंडियन खाने दी।
4: कमलिया, बस इयो गल है। चल आपा चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट, जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल ने।
5: पर कार किथे खड़ी करांगे?
4: घबरा ना, उथे पार्किंग लई भी वड्डी स्पेस है।
6: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ। अपने फंक्शंस पे बुकिंग लई कॉल 09262313232।
7: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी। ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने।
8: ओ यार, अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना है हेडेक बन गया।
9: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
10: इवेंट और टेंपरेरी अल्कोहल लाइसेंस भी?
9: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
11: कारोबार बढ़ाना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे, युगराज सिंह माहिल CA ते भरोसा करो। टैक्स होवे या बिजनेस, युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान।
12: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने।
11: इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, सालाना रिपोर्ट, तनख्वाह एंड BAYE। नवा बिजनेस शुरू करना, कारोबार दी सलाह, लोन एंड बैंक रिपोर्ट, इमिग्रेशन ले फाइनेंस पेपर, IRD ऑडिट, टैक्स तो बिजनेस ग्रोथ तक।
12: युगराज सिंह माहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है थोड़े नाल। कॉल करो 02102346659।
13: हजारा सपने पर इमिग्रेशन दा रास्ता मुश्किल?
14: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ नाल सब कुछ आसान।
13: स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, रेसिडेंस, सही राह ते सही सलाह। लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर अनीश राणा ते सौम्या मलिक,
14: तुहाडे भविख लई भरोसेजोग नाम। अनीश राणा एंड सौम्या मलिक, लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर। कॉल करो 02108531295 जां 02252800084
13: और विजिट 1 पॉलन स्ट्रीट, ग्रे लेन, ऑकलैंड।
14: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ, तुहाडे सुपने साडी जिम्मेवारी।
15: मदर्स डे दे खास मौके ते ग्लिटर ज्वेलर्स ने लगा दित्ती है सेल, ते तुहाडे लई ले आए ने शानदार स्पेशल्स। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते सिल्वर ज्वेलरी दे उत्ते बहुत सारे स्पेशल्स। ग्लिटर ज्वेलर्स जो कि 2x216 ग्रेट साउथ रोड मेनरेवा दे विच स्थित ने, हर रोज सवेरे 10 बजे तो लेके 5:30 बजे तक तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहिंदे ने। नेक्स्ट टू SB बैंक, फोन 02244000 ते। ना फेसबुक ना ट्विटर, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਲਿਟਰ।
16: ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪੈਮਬਰੋਕ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਗ੍ਰੇ ਸਟਰੀਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਰੋਡੋਟੂਨਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਡਿਸਡੇਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਵਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092, 07839-0092,

0: न्यूजीलैंड दा पहला 24/7 पंजाबी रेडियो रेडियो स्पाइस
1: टुटियां दा गमियों नाए टुटियां दा गमियों नाए जिन्ना लगियां दा चढ़िया सिचा
0: न्यूजीलैंड दा पहला 24/7 पंजाबी रेडियो रेडियो स्पाइस होशा नालों मस्ती चंगी रखदी सदा टिकाणे प्रोग्राम मौज मस्तियां हरेक शनिवार की सवेर थोड़े लिए लैके हाजिर होंगे ने हरमीत सिंह 10 बजे तो लैके 12 बजे तक स्टाइलिश सरदार हरमीत सिंह ओनली ऑन रेडियो स्पाइस हरेक शनिवार की सवेर

0: पिछे अंग वाची। सत श्री अकाल जी, मैं अमनत नौर ते तुसीं सुन रहे हो रेडियो स्पाइस।
1: न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी एफएम रेडियो स्पाइस।
2: सत श्री अकाल, यू आर लिसनिंग टू अ पंजाबी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम पेपेटावी। यू मे कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली ऑन 021-373-158।

0: ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਂਟਰ ਆਕਲੈਂਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਲਓ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
1: रेडियो स्पाइस लोकल न्यूज बुलेटिन 5 मई 2026। हेडलाइंस: न्यूजीलैंड अते सिंगापुर दे प्रधानमंत्रियां वलों व्यापार मजबूती ते जोर। इमिग्रेशन नीति ते सरकार अंदर तनाव वध्या। ऑकलैंड बस ड्राइवर ते हमले तो बाद सुरक्षा चिंता। मौसम विभाग वलों भारी बारिश की चेतावनी। खबरां विस्तार नाल। न्यूजीलैंड अते सिंगापुर दे प्रधानमंत्रियां ने अज गलबात दौरान कहा है कि अस्थिर ग्लोबल हालातां दे बावजूद दोवें देश व्यापारक रिश्तियां नूं होर मजबूत करनगे। उन्हां ने इंडो पैसिफिक खेतर विच स्थिरता अते सहयोग दी महत्ता ते वी जोर दित्ता। इमिग्रेशन नीति नूं लेके गठजोड़ सरकार दे अंदर असहमतियां खुल के सामने आ रहियां हन। इमिग्रेशन मंत्री वल्लों ACT पार्टी दे कुछ नवे प्रस्तावां ते आलोचना कीती गई है, खास करके उन्हां नीतियां ते जिन्हां नाल छोटे कारोबारां अते खेतीबाड़ी सैक्टर ते वाधू बोझ पै सकदा है। ऑकलैंड विच एक बस ड्राइवर ते किराया मंगण ते हमला होण दी घटना सामने आई है। इस घटना तो बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच ड्राइवरां दी सुरक्षा नूं लैके चिंता वधी है अते यूनियना वल्लों कड़े कदमां दी मंग कीती जा रही है। मौसम विभाग ने देश दे कई हिस्सियां लई भारी बारिश अते तेज़ हवावां दी चेतावनी जारी कीती है। लोकां नूं सावधान रहण अते जरूरी होण ते ही यात्रा करन दी सलाह दित्ती गई है। ए सन अज दियां ताज़ा खबरां। होर अपडेट ले सुनते रहो रेडियो स्पाइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਪੈਪੇਟਾਈ। ਯੂ ਮੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਨ 021-373-158।
3: ਜੱਟੀ ਵੀ ਅੜਬ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ, ਕੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਏਗਾ ਵੇ ਤੂੰ ਟੋਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਮੀ ਜੰਕਸ਼ਨ NB ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।

0: स्टेशन।
1: इंसान नु अपनी जरूरतां दे मुताबिक ही जिंदगी जीनी चाहिए है, ख्वाहिश दे मुताबिक नहीं।
2: रेडियो स्पाइस सुनने वाले सारे ही लिसनर्स नु सुरेंद्र गर्चारी प्यार भरी सत श्री अकाल जी, सलाम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है?
3: ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਚਾ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ।

0: ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਫੋਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪ 10 ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਪ 10 ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਫੈਬਟਾਈ। ਯੂ ਮੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਅਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਨ 021-373-158।
1: रेडियो स्पाइस लोकल न्यूज बुलेटिन 5 मई 2026। हेडलाइंस: न्यूजीलैंड अते सिंगापुर दे प्रधानमंत्रियां वलों व्यापार मजबूती ते जोर। इमिग्रेशन नीति ते सरकार अंदर तनाव वध्या। ऑकलैंड बस ड्राइवर ते हमले तो बाद सुरक्षा चिंता। मौसम विभाग वलों भारी बारिश की चेतावनी। खबरां विस्तार नाल। न्यूजीलैंड अते सिंगापुर दे प्रधानमंत्रियां ने अज गलबात दौरान कहा है कि अस्थिर ग्लोबल हालातां दे बावजूद दोवें देश व्यापारक रिश्तियां नूं होर मजबूत करनगे। उन्हां ने इंडो पैसिफिक खेतर विच स्थिरता अते सहयोग दी महत्ता ते वी जोर दित्ता। इमिग्रेशन नीति नूं लेके गठजोड़ सरकार दे अंदर असहमतियां खुल के सामने आ रहियां हन। इमिग्रेशन मंत्री वल्लों ACT पार्टी दे कुछ नवे प्रस्तावां ते आलोचना कीती गई है, खास करके उन्हां नीतियां ते जिन्हां नाल छोटे कारोबारां अते खेतीबाड़ी सैक्टर ते वाधू बोझ पै सकदा है। ऑकलैंड विच एक बस ड्राइवर ते किराया मंगण ते हमला होण दी घटना सामने आई है। इस घटना तो बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच ड्राइवरां दी सुरक्षा नूं लेके चिंता वधी है अते यूनियना वल्लों कड़े कदमां दी मंग कीती जा रही है। मौसम विभाग ने देश दे कई हिस्सियां लई भारी बारिश अते तेज़ हवावां दी चेतावनी जारी कीती है। लोकां नूं सावधान रहण अते जरूरी होण ते ही यात्रा करन दी सलाह दित्ती गई है। ए सन अज दियां ताज़ा खबरां। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ।

मैं एक वाक्य थोड़े नाल साझा करदा। मैं देखो मेरा साज मेरे हाथ से, मैं जेड़े वाक्य थोड़े नाल इत्थे स्टेज ते साझे कर रहा दरअसल सच्चे हुंदे ने जी। ये मेरी खुशनसीबी है, चलो किसी छोटी छोटी गल ते गीत औड़ जांदा। एक बारी दी गल आ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च काफ़ी देर तो पढ़िया भी हाँ, हूँ 6 साल तो उत्थे पढ़ा रहा। पिछले दसंबर की गल आ कि 2 नंबर होस्टल च असीं रहिंदे सी, ते उपरों मैं थले उतरिया ते मेरे कोल जामा सीगा जी 98 मॉडल, सैकंड हैंड ही लिया सी बेचारा, पर लिया तां सीगा कि उहदा नंबर गोवा दा सी। साढ़े उत्थे चंडीगढ़ गोवा का क्रेज़ बहुत नंबर मैं दस दिना, मोटरसाइकिल मेरे घरों चोरी होया, जेड़ा कोई इंडिया जावे तो दस दौ GA 01 7788, जिस किसी ने भी मिले उन्होंने लोड़ींदा इनाम भी दिता जाएगा। सो अच्छा मैं दस रहा सीगा कि मैं थले आया, दिसंबर का महीना तुहानू पता इंडिया च पंजाब च बहुत ज्यादा ठंड हुंदी है, थले बाहर मोटरसाइकिल खड़ा ऐन कड़ाके की ठंड। मैं आके चाबी लाई कि कमारी अद्धी किक ते स्टार्ट हो गया। मैं यार कमाली हो गई, ये बेचारा पुराना मेरे वर्गा मोटरसाइकिल ते स्टार्ट हो गया। तो उत्थे मैनू उस वक्त आमद हुई, एक शायराना आमद जिहड़ी हुई है साडे पेशे खिदमत। अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा या मानी होर दस की भाल दी, अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा या मानी होर दस की भाल दी, ओ पाली जीन परा रखता पजामा

ना खुशी रही ना चाह रहा, ना मंजिल रही ना राह रहा। ये दुनिया भावे लख वसती, टुटिया दिल कितों ना जुड़िया। मेरे यार इन दूर गए, जिथों वापस कोई ना मुड़िया, जिथों वापस कोई ना मुड़िया है।

असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाहें जोर, असंख गल वढ़ हत्या कमाहें, असंख पापी पाप कर जाहें, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहें, असंख मलेच मल पक खाएं, असंख निंदक सिर करहें भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै सही भली कार।

जत पहारा तीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द।

है, निदान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, वर्ण है, भूत है, वर्ण है, अगंज है, बंज है, जूझ है, जंज है, अमीक है, रफीक है, दंद है, बंद है, निर्बूझ है, सूझ है, काल है, जाल है, अला है, जा है, अनंत है, मांत है, अलीक है, निर्श्रीक है, निर्लंब है, सम है, अगम है, जम है, भूत है, छूत है, अलो

प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमो देव देवे पेकी पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगाणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ निरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाद नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम विद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगी अपोगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूपु भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तक स्नाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो शिष्टे नमो तंत तंतंग सदा सचिदानंग सर्वं परनाशी अनूपे रूपे समस्तुल्यवासी सदा सिद्धा भूतदावत कर्ता अदोर्दर्दंग गंगो कर्ता परम परम परमेश्वरं पोषपालंग सदा सदासी दाता दयालंग अछेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त सदामंग तेरा जोर चाची छंद जले हैं थले हैं भीत हैं वे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाणे समस्ते निदाने नमस्त्वंग निनाते नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेश नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्य नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिवंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कर्म प्रणाशी सदा सर्वदार सिद्धं निवासी चर्पण शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे खाले जोगे चाले भोगे चाल राजे टाल साजे अखाले तरमंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाणे सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भोगता सर्वंग जोगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंतो प्रसाद आदरूप अनादमूरत जोन पुरकपार सर्वान त्रिमान दे पेवादुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल जत्र तत्र विराजी अवदूत रूपसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जोन याद सेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा होए फैले अनुराग नाम काम बहीन पेखत तामू न जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदा मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिरेक देव पेव न जान ही जय वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान ही कह जेव तात्मात न जात जाकर चरमर महीन चक्र बक्र फिरा चतर चक्र मान ही पुरतीन लोग चौदह के बिखै जग जापे जय जाप आद देव अनाथ मूर्त थाप्यो सवै जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो संभव गण पंजनहार कालहीन कलाश जुगत काल पुरख देश तरम ताम सब परम रहत भूत अलग भेष अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेक सर्वशास्त्र न जान ही जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कहनेत भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नाया वही वो चित मदवार संतो

चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भरती, चत्र चक्र पाले, चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे, चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र मानिया, चत्र चक्र दानिया, चत्र चाची छंद, ना सत्राय ना मित्राय, ना परमंग ना पित्राय, ना कर्मंग ना काये, अजन्मंग अजाये, ना चित्राय ना मित्राय परया।

कि कर्मंग करीम है, कि सर्वंग कली है, कि सर्वंग दली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौन है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जा हो, कि सर्वत्र पा हो, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र शोक है, कि सर्वत्र पोख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र पाण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, कि सर्वत्र जाप है, कि सर्वत्र थाप है, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वं कलीम है, कि परम फहीम है, कि आकल अलाम है, कि साहब कलाम है, कि हुसनल वजू हैं, तमाम रजू हैं, हमेशो सलाम है, सलीक मुदाम है, गनीमुल शिकस्त है, गरीबुल प्रस्त है, बिलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजूअल निदान है, हरीफुल अजीम है, रजाय यकीन है, अनेकुल तरंग हैं, भेद हैं, भंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनीमुल खिराज हैं, निरुकत स्वरूप हैं, त्रिमुकत विभूत हैं, प्रभुकत प्रवाह हैं, सुयुग सुदा हैं, सदैव स्वरूप हैं, भेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तो सलाम हैं, सदैव काम हैं, निर्वाद स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, अहंगाध रूप है, नाथ स्वरूप है, अनंगी नाम है, त्रिवंगी दृकामे त्रिवर्गंत वादे गंजे गादे सुपंग सर्व भागे सुसर्वानरागे त्रिभक स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीपवास हैं, निरुक्त प्रवाह हैं, सदैव सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, परयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रवाह हैं, अनुक स्वरूप हैं।

तर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंतो प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवंग प्रकाशी अनंगंग स्वरूपे अभंगम विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं शरीक हैं मितोमिक हैं सदैवंग प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती चंतो प्रसाद कि जाहर जहूर हैं कि हाजर हजूर हैं हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम हैं कि साहब दिमाग हैं कि उसनल चिराग हैं कि कामल करीम हैं कि राजक रहीम हैं कि रोजी दहिंद हैं कि राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं कि हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं रासुल विकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं कि साहिब करा हैं कि नरकंग प्रणास हैं भैस्तुल निवास हैं कि सरबुल गमन हैं हमेशुल रमन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमीश है समस्तुल अदीस हैं अदेसुल अलेख हैं मेसुल बेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरा जमाल हैं कि अचलम प्रकाश है कि अमितो सुभाष हैं कि अजब स्वरूप हैं कि अमितो विभूत हैं कि अमितो पसाएँ कि आत्म प्रभा हैं कि अचलंग अनंग है कि अमितो भंग अमित भार संतो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगुन दाम हर बर गंज हर नर प्रभंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खन पर नर मंड अन भव नाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशीज अंग आसन भंग उपमा पार गतमिदुदार जल थल मंड दिव्य पांड जल थल महान दिव्य व्यंत अनुभव ना तत्तुरास आजान भाव एक कैसे दाओ औं करयाद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरकार कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंशिज गाद अजिज नाबाद अनजज गाद अनरज बात अनटुट भंडार अनठट पार आडिट धर्म अत टीट कर्म अनबरण अनंत दाता मंत हर बोल मना छंद तो प्रसाद करुणालय हैं हर काले हैं खलखंडन हैं मैं मंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कलकारण हैं सरुवारण हैं त्रित केतरण हैं जगकेकरण हैं मन

हैं, सर्वंपर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपाश्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणाकर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस है, खलकंडस है, प्रति पर हैं, करुणाकर हैं, अजपा जप हैं, थपा थप हैं, कृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, तरणी देते हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकित हैं, अमितामित हैं, नरनायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रक्तापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत कर्ताकर हैं, हर्तार हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवश हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजराजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बिंदे, नमो बीज बीजे, नमो रास संग ताम संग सात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग।

अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकारमंग परमंगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तोल प्रणाम समस्तोल प्रणासे अगंजुल नाम समस्तोल निवासे निरकाम विभूत समस्तु स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रम प्रणासी करीमोल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमो रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं बंग सुबंग।

गुंजत गूढ़ ज्ञान की सुंदर हिंसत ही है राज जारे भूत पविक भवान के भूपत कौन गण नहीं जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजेबिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पिख है पवन आहार जती जतार सवै सवै चार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिबाह दुरंत पास सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरै मन मै।

काहूं लै पहन पूज तरे हो सिर, कहूँ लै लिंग गरे लटकायो, काहूं लख्यो रवाची दिशा में, काहूं पचा को शीस न आयो, कऊ बतान को पूजत है पस कऊ मरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो, कऊ बतान को पूजत है पस।

वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे पुरख जमन पग परे ते।

ज्यों तू चलाहें तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुर तेरे, जिव तू चलाहें तिवै चलह, जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन्ना मिलाहे, से हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहेब ज्यों भावै तिवें चलावहे, एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया, एहो तिनकै मनुष्य जिन धुरो लिखे आया।

तिना स्माणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारं पाणी कहे नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तक कच्ची सतगुरु वाज हो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुंदे कच्चे कच्चियां खाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित

प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को

बानी प्रभ कै सिमरन सहस मानी प्रभ कै सिमरन नह चलयासन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे सेजन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमर

है तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखत साधक मान।

हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भोगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछनाए बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धर जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओठ स्तानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की

कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाई संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शस्त्र सिमरत बख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म

साधना करै मन ते कबहू ना बिख्या टरै जल धूबे बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहुत सियाणप जमका भौ व्यापै अनक जतन कर तिशना त्रापै भीख अनेख अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगे नहीं सिजै छूट सनाही उब प्याल मोह व्यापी माया जाल अबर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह

साध संग इहो में शूरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की शरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जांका मिटे अवमान।

अष्टपदी दस वस्तु लै पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गोआवे एक पी न दे दस पी हर ले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जाए सद नमस्कारा चांके मन लागा प्रभ मीठा।

अस अपनी अमान कछबहर शाहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोबे बहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरखी छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पुछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या होमी ममता माया मिथ्या राज जोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रो मुह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर की चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा।

एक तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लै लड़ लाए थान थनांतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा

देव अष्टपदी जहें प्रसाद शत ही अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जहें प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे जहें प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जहें प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जहें प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जहें प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कत अवर लुभाव है जहें प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर तांका जस गावी जय जहें प्रसाद तू सबको माने मुखता को जस रसन बखाने जहें प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पाव है नानक पत सेती घर जाव है जहें प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम सुनेही जहें प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जहें प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकर प्रभु तांकै जहें प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जहें प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक तांकी भगत करे जहें प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जहें प्रसाद अस्व अस्त अस्वारी मन तिस प्रभु को कबहू न बिसारी जहें प्रसाद बाग मिल्ख तना राख परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जहें प्रसाद करे पुन भव दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जहें प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जहें प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जहें प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जहें प्रसाद तेरी पत रहै गुरु प्रसाद नानक जस कहे जहें प्रसाद सुने करन नाद जहें प्रसाद पेखे बिस्माद जहें प्रसाद बोले अमृत रसना जहें प्रसाद सुख सहजे बसना जहें प्रसाद हस्त कर चले जहें प्रसाद संपूर्ण फले जहें प्रसाद परम गत पावे जहें प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जहें प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जहें प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जहें प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जहें प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जहें प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गुआए सोहर गुन गाओ प्रभु कृपा ते हुई प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्ब निदान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हू लिया चित चित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ स्लोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनबंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सबहूत नबीरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनी कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुंतावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बै

सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु के संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कुलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद्ध वसे नानक उदरे साध सुन रसे साध कै संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुन गाओ साध के संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कटकट डिठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पिख है एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों वसुद्धा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुई प्रगाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं अवमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का

ने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का

मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पर त्रै रूप न पेखे नेत्र साध की टैल संत संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरप्रसाद बिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशह केवल भगत कीर्तन संग्राचय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप विरै अवरै नाम जपावै नानक ओ बैसनो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत हर कै चरण हृदय वसावै नानक ऐसा भगौती भगवान।

इस जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जौ न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को गे

दूर नानक आप अलिप्त रहा प्रभूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जूनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह भाणा तें तें राखे, नानक सब किछ प्र

नानक दृष्टि अवर ना आवै, कहो मानुख ते क्या होया आवै, जो तिस भावै सोई करावै। इस कै हाथ होए तां सब किछले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै। भरमे भूला दहद सतावै, निमक माहे चार कुंठ फिरावै। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। खिनमे नीच कीट कूराज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जां का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दहन दिस प्रगटावै। जां को अपनी करै बख्शीश, तां का लेखा न गने जगदीश। जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुनथियो। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब

साध नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवे नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत एहु पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनास, मन तन नाम रत्ते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिस कै अंतर राज अवमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनबंत, सो होवत विस्ता का जंत, आपस को कर्म वंत कहावे, जन्म मरे बौ जौन प्रमावे।

गीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देह सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लग कोठ धावै तृप्त न आवे माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथ सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक।

नाना चलत करे खिन माहे, पूर रिहो पूरन सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नान खर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जांका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। कुरतूत सत सत जांकी बाणी, सत पुरख स महेशमाणी। सत कर्म जांकी रचना सत, मूल सत सत उत्पात। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, और न बूझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जां कै संग तरै संसार। जन का सेवक सो बटभागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भय सच नानक होसी भय सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुणे आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, कर्म करावन तिन मूल पछानिया। जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् गया तिस मन प्रगटाया। पैते निरपोहे बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माहे लै बस्त गडाई, ताको भिन्ना कहना जाई। बूझे बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ समारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पात राखै, ता की गतमित कोय न लाखै। प्रभ के सेवक को न पहुंचै, प्रभ कै सेवक ऊंच ते ऊंचै। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दृश्य प्रगटाया। नीकी कीरी में कल राखै, भस्म करे लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काटते आप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बो भांत, तिसके करतब वृथे जात। मारे ना राखे अवर न कोए, सर्ब जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बढ़ाणी। बारंग बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मंत्रन त्रपिए। नाम रतृंजन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दिसताया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। करे भगत आत्म के चाए, प्रभ अपने सु रहे समाए। जो हुआ हो बत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कौ नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसकै दर सब पाव मिटावे। अबर सियाण पसगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ।
तिसकै संग सिख उद्रै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिखै बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। मन बीचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार जरास। सेवा करत हुए न कामी, तिसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वै गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भरम। सह सियान पलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बडभागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दर गै गवै। सुनकर बचन करन अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जांका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मलाए। जेबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक। काहू बो न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निरवैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हिरदे सिमरै। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। ई हर रस पावे जन कोई।

मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तह ते नासे, तपत माहे ठांड बरताई, अनंत पिया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चुका निरपो हो बसे, सगल ब्याद मनते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोई, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोई, सर्ब नरंतर इको सोई, ओत पोत रबिया रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चाले बिन

संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुनी शरदा सपूरी रव रहा सत्संग।

सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तने अंतर एही सुआओ, नित्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए, भक्त जन

जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वरूप को कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलत आप करनी हार, नानक ठाकर अगम अपार। अबनासी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे, तब कौन छुटै कौन बंधन बाधे। आपन आप ही

तै कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कह कीस, जै ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तै किसे भूख कवन तृप्तावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नाही सोमार, जब अपनी शोभा अपन संग मनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्ब कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहाँ को चीन, जब अपने आप उरतारै, तो सगन अपसगन कहाँ विचारै, जय आपन ऊच आपन आप नीरा, तो कौन ठाकुर कौन कहियै चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अछल अशेर भेद समाया, ऊहां किसे व्याप्त माया, आपस को आपे आदेश, तह गुण का नाही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप पतियारा, तै कौन कथे कौन सुन नेहारा, बहु बेअंत ऊचते उच्चा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आप रचियो प्रपंच आ

आपन खेल आप कर दिखै, खेल संकोचै तो नानक इकै। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहूं पाखा आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे अनंत चोज, आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावे तिस आपन नाए लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा

करो उधार, अमृत बचन हर के गुन गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय वसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोइलहु सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच प्रिखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख

आए निरपौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै हंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिरे ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जांकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जांके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो

सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का एह आधार। उत्तम स्लोक साध के वचन, उमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरै लोकै नस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत बाजे, सुन सुन अनंद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल महात के माथे, नानक उदरे तिनके साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रवाह मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संगलैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर ना होवे आवन जावन। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नमनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब के मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। इहो निदान जपै मन कोय, सब जुग में ता की गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट पराद साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ दे तत्काल उधारै।

रंजीत बाबा लाइव कॉन्सर्ट जल्दी ही टिकट आप नया खरीद लो eventfinder.co.nz पे जाके रेडियो स्पाइस 20 टाइप करो और 20% डिस्काउंट तुसी टिकट सुपर ले सकते हो। और कुछ दिन बाकी है इस शो दे, ड्यू ड्रॉप इवेंट सेंटर दे विच ये शो रहेगा 9th of May यानी कि दिन रहेगा शनिवार। लाहौर दा एक अखी डिठा हाल इस गीत दे विच बयान कीता है, बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ गीत है रेडियो स्पाइस दिया तरंगा तो।

0: आर्थिक भविख नु सुरक्षित करने लई तैयार हो कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड तुहाडे सुपने पूरे करने लई हाजिर है।
1: तुहाडा सुपना कार खरीदना होवे या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चाहे तुहाडे कारोबार लई होवे, ता साडी टीम तुहाडे लई हाजिर है। 25 साला तो वध दे तजर्बे नाल साडी माहर टीम हर कदम ते तुहाडी मदद करने लई समर्पित है।
0: विजिट करो capitalfinance.nz ते
1: या फिर अज ही सानू कॉल करो 0800-626-685 0800-626-685।
0: कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, जिथे तुहाडा शुरू होंदा।
2: वीजा अप्लाई करन तो पहला रात नू नींद नहीं आंदी सी, फिर स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज लिमिटेड वालिया ने फाइल हैंडल कीती, हर स्टेप समझाया। आज न्यूजीलैंड च जॉब है, फैमिली भी मेरे नाल है।
3: स्टूडेंट वर्क फैमिली AEWV ते रेजिडेंस वीजास, स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज, ट्रंगा ऑफिस 150 द स्ट्रैंड CBD, हेस्टिंग्स ऑफिस 309A फ्रेमली एवेन्यू। कॉल सुखजिंदर सिंह 0226970651। सब दे सपने सच कर देंगे।
4: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नु इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
5: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
4: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
6: हुने संपर्क करो शैलेन सिंह नो 0272929।

0: यार कल एक चक्कर पै गया ते पुलिस ने हुन इंटरव्यू लई बुला लिया, समझ नहीं आ रहा कि की कहना।
1: ओ कोई ना, तू फोन मिला ते टेंशन कटा, गुल लॉ कोल जा।
2: गुल लॉ दे बैरिस्टर गुल केसरानी, जिन्हां कोल है 20 साल तो वध दा तजुर्बा, फैमिली वायलेंस, ट्रैफिक, ड्रिंक एंड ड्राइव, सेक्सुअल असॉल्ट, ड्रग्स डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, मिसकंडक्ट या फिर न्यूजीलैंड पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन, ए तुहाडे हर तरह दे कानूनी मसले दे देणगे हल, ओ वी बिना किसे ढिल।
0: ए 9 साल न्यूजीलैंड पुलिस दे सीनियर प्रोसिक्यूटर रह चुके ने।
2: कॉल बैरिस्टर फारूक गुल केसरानी 02-2-3530-872।
3: हलवाई स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, असली इंडियन फ्लेवर्स, न्यूजीलैंड स्टाइल विच।
4: डाइन इन द मजा लो हलवाई ते, फ्रेश स्वीट्स, स्नैक्स, चाट, इंडो चाइनीज एंड साउथ इंडियन मेन्यू भी अवेलेबल है। 100% न्यूजीलैंड मेड स्वीट्स, डेली लाइव जलेबी स्टॉल 2 to 9 तक, लंच टू डिनर थाली ऑप्शंस ऑलवेज रेडी, 120 बंदियां दा पार्टी हॉल भी अवेलेबल, अते वेज एंड नॉन वेज केटरिंग भी करदे ने, इनडोर या आउटडोर। विजिट करो हलवाई पापा टोय टोय 204 ग्रेट साउथ रोड या हलवाई हैमिल्टन 829 विक्टोरिया स्ट्रीट।
5: यार पोटुशा ओए, कदे अपा सुनाउने आ हड बीती ते कदे अपा सुनाउने आ जग बीती, पर यार कमाल दी गल है ओए, अज तक अपा कदे ट्रक ड्राइवरां दी यार गल ही नहीं कीती।
6: ले मैनू पता है तू ट्रक ड्राइवर बाइया की कोई ज्यादा ही साइड लेना, तेरे ना बहुत ज्यादा प्यार कर दे।
5: तेनू की दा पता यार।
6: ले वो हर ट्रक ड्राइवर बाई ने हर डाले ते तेरी फोटो लाई हुंदी है।
5: अच्छा,
6: ते नाल मोटे अक्षरां च लिखिया हुंदा है।
5: की लिखिया हुंदा है?
6: कि बुरी नजर वाली तेरा मुंह कर।
7: इंसान नू अपनी जरूरतां दे मुताबिक ही जिंदगी जीनी चाहिदी है, ख्वाहिश दे मुताबिक नहीं। रेडियो स्पाइस सुनने वाले सारे ही लिसनर्स नू सुरेंद्र गर्चारी प्यार भरी सत श्री अकाल जी, सलाम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है?
8: ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਰਚਾ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ।

0: वैसे अपनी ही विधानसभा की सीट जी है वह नहीं बचा सके सीएम ममता बैनर्जी भवानीपुर तो भाजपा के उम्मीदवार जो सुमवेदु जो है सो इन्होंने 15,114 वोटों के पछमी बंगाल के जो सीएम है सो उन्होंने ममता बैनर्जी को फिलहाल इन्होंने वोटों के नाल हरा दिता हार का सामना करना पाया। चलो हार जित तो होंदी रहिंदी है शायद लोगों नू उत्थे दे लोगों नू कुछ बदलाव चाहिए है वह कुछ चेंजेस लियाना चाहते हैं बेंगोल दे विच वेस्ट बेंगोल दे विच थानू पता है कि उत्थे दी लोग बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट है और शायद उन्होंने लगता होएगा कि बीजेपी बेहतर हुण काम कर सकती है हुण बीजेपी जिहड़ी है ये मुख्यमंत्री किनू बनाऊगी सवालिया निशान है क्योंकि इस वास्ते पांच चेहरे जिहड़े है जिस विच संविधु दा नाम भी है जिन्होंने ममता बैनर्जी नू इन्ने वोटां दे फर्क दे नाल हराया सो वो सोच रही कि शायद ये भी बन सकते हैं पर मैनू लगता कि इहदे विच हुण सरकार जिहड़ी है वह खुद ही पंबल भूसे दे विच पई हुई है तुसीं इहदे बारे की सोच रहे हो कि हुण वेस्ट बेंगोल दे विच नवा चेहरा किहड़ा हो सकता है।
1: Yo,

0: बस कुछ ही दिन बाकी है रंजीत पावा आदि शोधी और रंजीत पावा लाइव कॉन्सर्ट एट ड्यू ड्रॉप इवेंट सेंटर और इधर टिकट्स इवेंट फाइंडा .co.nz ते जाके तुसी बाय कर सकते हो। रेडियो स्पाइस 20 टाइप करो, एक कोड यूज करके तुसी 20% डिस्काउंट ले सकते हो। रंजीत पावा ये सोने सोने गीत है और वैसे भी जो कोई सरदार मुंडा होंगे ना पग बन के गायक या कोई सेलिब्रिटी तो मुंडे पग्गा बन के जाते हैं, तो तुसी भी हुन सोनी सोनी पग्गा अपनी कट लो अलमारियां चो और कुड़ियां सूट कट लैन ते पहुंचणगे 9 तारीख नू, दिन रहेगा शनिवार।
1: तुसी अपने आर्थिक भविख नू सुरक्षित करन लई तैयार हो? कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड तुहाडे सुपने पूरे करन लई हाजिर है।
2: तुहाडा सुपना घर खरीदना होवे या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चाहे तुहाडे कारोबार लई होवे, तां साडी टीम तुहाडे लई हाजिर है। 25 साला तो वध दे तजर्बे नाल साडी माहर टीम हर कदम ते तुहाडी मदद करन लई समर्पित है।
1: विजिट करो capitalfinance.nz ते
2: या फिर अज ही सानू कॉल करो 0800 626 685 0800 626 685।
1: कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, जिथे तुहाडा शुरू हुंदा है।
3: बस फेसबुक इंस्टा ते रील्स देखी जाओ, इंश्योरेंस ना करायो।
4: ओ डार्लिंग फिकर नॉट, आपा आज ही जाना इंस्टाश्योर। इंस्टाश्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस सर्विसेज,
3: लाइफ, मेडिकल, ट्रॉमा, आईपी एटसेट्रा फ्रॉम इयर्स। इफ यू आर टायर्ड ऑफ ओवरपेइंग योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस और लुकिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन, गेट इन टच टुडे। कॉल 6422-698-7837 इंस्टाश्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड।
5: मैं क्या जी मुंडे दा व्याह तरिया ते तुसी सोचां विच घूमी जांदे हो।
6: भाई मैं सोच रहा सी के व्याह ते डेकोरेशन ते एंटरटेनमेंट दा प्रबंध किवें करिए।
5: इस दी जिम्मेवारी असी देवांगे स्टाइल एनजेड इवेंट्स नो, जो कि इवेंट मैनेजमेंट ते माहिर ने। ए बहुत ही प्रोफेशनल ने ते सारियां ही सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने, जिवें कि घर जां हॉल दी डेकोरेशन, भंगड़े दी टीम, डीजे, लाइव ढोल, जागो, डेकोरेशन हायर, मेहंदी नाइट्स अते मच मोर। मैं तां लक्की दा फोन नंबर भी नोट कीता होया 0219-9448 जां फिर 0921-29563।
7: Style NZ Events function koi bhi hove usnu yaadgari banaun di zimmevari saadi।
8: Indelible Homes quality stand alone ate terraced houses vich ik bahut hi bharoseyog naam, eh bahut hi wajib keemtan vich tuhade layi design and build kar sakde ne, ya fir subdivisions ate apne plan mutabik vi tusi build karwa sakde ho। Visit karo indelibalehomes.co.nz te।
9: main apna visa immigration star to karwaya aa, inna ne mere paperwork enna solid।

0: गुरु मार्ट किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स जीवे के रुमाला साहेब कृपाना श्री साहेब कछेरा कड़े सर्ब लोदे पांडे गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम मंदिर मंजे कुंडे चकले वेल ने न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले मलमल दुपट्टे रिटेल दे होलसेल सब कुछ इको छत्थले गुरु मार्ट 1542158 कोलमा रोड पापा टोयटोय कॉल 09277226 और व्हाट्सएप 02231721134 और विजिट gurumart.co.nz नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल
1: बड़ी रीत सी कि साडे भी घर रौनका होन साडे भी वेड़े किलकारियां होन
2: ताही आपा चले आ आयुर्वेदा हेल्थ क्लिनिक जिथे आयुर्वेदिक तरीके नाल पूरी तरह प्रोफेशनल अप्रोच है ते थानू इमोशनल सपोर्ट भी दिंदे ने
1: आज ही कॉल करो डॉक्टर प्रिया नु जिन्हां नु है 33 साल दा तजुर्बा हुन दुनिया दे किसी भी कोने च बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन लो ते ट्रीटमेंट पाओ ज्यादा जानकारी लई विजिट करो www.drpriaayurvedic.com ऑनलाइन कंसल्टेशन लई व्हाट्सएप करो 02125309 61 या ईमेल करो priya@ayurvedic.co.nz
2: हजार तो वध लोका दी जिंदगी नु रोशन कीता तुसी भी उना दा हिस्सा बनो स्टे पॉजिटिव डॉट गिव अप
3: की तुसी इमिग्रेशन दे किसे मसले दा हल चाहने हो
4: की तोडा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहे
3: तां फिर अज ही मिलो जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस नु
5: सुखप्रीत कौर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस न्यूजीलैंड रेजिडेंस स्टडी वीजा वर्क वीजा या डेपोर्टेशन सेक्शन 61 मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील कॉल 211-825-718
3: 211-825-718
6: या फिर विजिट करो लेवल 1 706 ग्रेट साउथ रोड पेनरोज ऑकलैंड
3: मिस्टर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है
7: कारोबार बढ़ाना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे युगराज सिंह माहिल CA ते भरोसा करो टैक्स होवे या बिजनेस युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान
8: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने
7: इनकम टैक्स रिटर्न GST रिटर्न सालाना रिपोर्ट तनख्वाह एंड BAYE नवा बिजनेस शुरू करना कारोबार दी सलाह लोन एंड बैंक रिपोर्ट इमिग्रेशन ले फाइनेंस पेपर IRD ऑडिट टैक्स तो बिजनेस ग्रोथ तक
8: युगराज सिंह माहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है थोड़े नाल कॉल करो 02102346659
9: वेलकम बैक एक बार फिर थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत है तो अज के सर्जरी सवेर प्रोग्राम के दौरान तुम बहुत खूबसूरत ढंग ने साथ दिता सुरेंद्र गर्चा जी का जेडे कि सोमवार तो लैके शुक्रवार तक थोड़े लिए सवेरे 7:30 बजे तो लैके 11 बजे तक उचेचे तौर पर प्रोग्राम सर्जरी सवेर लैके हाजिर होंगे ने इस प्रोग्राम के जिथे उन्होंने वालों वक् वक् जानकारियां थोड़े नाल सांझियां कीतियां जांदियां ने उत्थे सोमवार बुधवार अते शुक्रवार नूं उन्हां दा मेरे नाल विशेष तौर पर अद्धे घंटे का लाइव प्रोग्राम हुंदा है जी 9 बजे तो लैके 9:30 बजे तक इस तरह निक्के वीर नवतेज रंधावा हुणां दे नाल उन्हां दा किसी खास विषय के उत्ते मंगलवार अते वीरवार नूं 9:30 बजे तो लैके 10 बजे तक किसी ना किसी टॉपिक के उत्ते चर्चा हुंदी है जिस दे विच तुहानूं सारयां नूं वी शमूलियत करन दा खुल्ला सद्दा दित्ता जांदा है स्थानक खबरां की गल करिए 11 बजे के करीब असी तुहाडे लई स्थानक खबरां हाजिर करते हैं उस तो बाद फिर गीत संगीत का दौर होएगा प्रोग्राम नाले गल्लां नाले गीत दे दौरान मैं तुहाडा दोस्त होस्ट परमिंदर सिंह पापा टोए टोए
10: रेडियो स्पाइस लोकल न्यूज़ बुलेटिन 5 मई 2026 हेडलाइंस क्राइस्ट चर्च मामले विच जूरी वल्लों गंभीर फैसला ऑकलैंड विच साबका वकील ते मनी लॉन्ड्रिंग दे दोषां दी सुनवाई मैनुकाऊ पैक एंड सेव पार्किंग फाइन ते विवाद ताउपो विच कोविड वजह सबसिडी फ्रॉड मामले च अपील खारिज ओहोपे बीच ते जहरीला समुद्री सप मिलण नाल चौकसी आखरी वेले वीज़ा मिलण नाल पिता अपने नवे जन्मे बच्चे नू देख सकया ऑकलैंड विच फूड वेस्ट तो एनर्जी प्रोजेक्ट दी गति हौली खबरां विस्थार नाल क्राइस्टचर्च विच एक मामले विच जूरी ने एक व्यक्ति नू रेप अते अबडक्शन वर्गे गंभीर दोषां च दोषी करार दिता है मामला उस घटना नाल जुड़िया है जिथे एक नौजवान लड़की नाल मुलाकात तो बाद उसनू कार ले जाके हमला कीता गया सी ऑकलैंड विच एक साबका वकील रोहिणी शर्मा उत्ते $600,000 दे मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच कार्रवाई जारी है उसते दो वक् वक् पीड़ता तो वड्डी रकम लैके उसका गलत इस्तेमाल करन दे दोष हन मैनुकाऊ दे पैक एंड सेव विच एक खरीदार नू वड्डी शॉपिंग करन तो बाद $85 दा पार्किंग टिकट मिलण नाल नाराजगी सामने आई है इस मामले ने पार्किंग नियमां ते वड्डी चर्चा छेड़ दित्ती है ताउपो विच कोविड-19 वेज सबसिडी फ्रॉड मामले विच एक कारोबारी दी सज़ा खिलाफ अपील अदालत ने रद्द कर दित्ती है जिस नाल उस दी सज़ा बरकरार रहेगी बे ऑफ प्लेंटी दे ओहोपे बीच ते एक जहरीला समुद्री सप मिलण नाल लोकां नू सावधान रहण लई किया गया है अधिकारियां ने चेतावनी दित्ती है कि इस तरह दे सप खतरनाक हो सकदे हन एक खुशखबरी विच एक नवे पिता नू आखरी वेले वीज़ा मिलण कारण ओ अपने नवे जन्मे बच्चे नू मिल सकिया इस मामले नू लोकां वल्लों सोशल मीडिया ते काफ़ी सहयोग मिलिया ऑकलैंड विच फूड वेस्ट तो एनर्जी बनाउन वाले प्रोजेक्ट ते काम जारी है पर इस दी अपटेक हल्ले भी हौली है इस प्रोजेक्ट दा मकसद कचरे नू गैस अते खाद विच तब्दील करना है ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਨਾਲ।
11: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਨੇਰੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਖੂਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ।
12: You are now tuned in to your number one radio station.
9: Radio Spice ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ 11:17 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10:30 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ।
13: Show mercy on it.

0: गुरु मार्ट किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स, जीवे के रुमाला साहेब, कृपाना, श्री साहेब, कछेरा, कड़े, सर्ब लोदे पांडे, गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम, मंदिर, मंजे, कुंडे, चकले वेलने, न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले, मलमल दुपट्टे, रिटेल दे होलसेल, सब कुछ इको छत्थले। गुरु मार्ट 1542158 कोलमा रोड पापा टोयटोय। कॉल 09277226 और व्हाट्सएप 02231721134 और विजिट gurumart.co.nz। नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल।
1: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
2: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत, मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
1: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
3: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
2: 02729297766। सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम सफर विच पूरी इज्जत ते सहारा।
4: करन तो पहला रात नो नींद नहीं आंदी सी, फिर स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज लिमिटेड वालिया ने फाइल हैंडल कीती, हर स्टेप समझाया। आज न्यूजीलैंड च जॉब है, फैमिली भी मेरे नाल है।
5: स्टूडेंट वर्क फैमिली AEWV ते रेजिडेंस वीजास, स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज, ट्रंगा ऑफिस 150 द स्ट्रैंड CBD, हेस्टिंग्स ऑफिस 309A फ्रेमली एवेन्यू। कॉल सुखजिंदर सिंह 02269706651। सब दे सपने सच कर।
6: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है, असी थानु दंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह। ना सिर्फ वेचना, ना के खरीदना, सिर्फ रिश्ता बनाउना। इमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो। कॉल करो हारकोर्ट्स मैनुरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढलों 02230049224 या फिर दलजिंदर पांगली 02105643870।
7: त्योहार आ रहे ने, मिठाई कित्थों लेनी आ?
8: लै दस इको जगह जिथे मिलदी है देसी घ्यो दी शुद्ध मिठाई। मंडे टू फ्राइडे हर रोज नवे स्पेशल्स, कड़ी चावल, मसाला डोसा, राजमा चावल, पिज्जा, पनीर डोसा। शिवानीज रेस्टोरेंट, नाम ही काफी है।
7: shivani.co.nz ते जाके ऑर्डर ऑनलाइन करो। न्यूजीलैंड किते भी शिवानीज रेस्टोरेंट 905 डोमिनियन रोड, माउंट रॉस्किन, 23 एरिक बेकर प्लेस, बाबा टोयटोय। बोले रिश्ते आ चो मिठास, शिवानीज रेस्टोरेंट है खास। शिवानीज, वेयर टेस्ट मैटर।
9: जदों जिंदगी कानूनी चुनौतियां पेश करती है, तां ब्रूक लॉ दे मनिंदर कौर सिद्धू अते उस दी टीम दी महारता ते भरोसा करो।
10: फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, ट्रस्ट, विल्स, एस्टेट एंड इमीग्रेशन लॉ। कानून विच मनिंदर कौर सिद्धू 18 सालों तो वध अनुभव नाल, असी तुहानू हर कदम ते विश्वास नाल मदद करदे हां।
9: मनिंदर कौर सिद्धू अते उहनां दी टीम तुहाडे कानूनी मामलिआं विच विश्वासयोग साथी।
10: brooklaw.co.nz ते जाओ या 07838338385 ते कॉल करो।
11: रिपेयर लई जिथे भी जाना, पैसे बहुत मांगदे आ ते तसल्ली भी नहीं हुंदी।
12: क्राउन ऑटोमोटिव रिपेयर्स को ही जाना।
11: ओ क्यों?
12: क्योंकि ये मैकेनिकल रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर बहुत वधिया तरीके नाल करदे ने। तू पावे गड्डी दे टायर नवे लै जां पुराने वाले, अते पुरानीयां गड्डियां खरीद दे ते बेच दे भी ने। इंजन सर्विस, ट्रांसमिशन, कैम बेल्ट्स, CD जॉइंट्स, क्लचेस, ब्रेक्स, बैटरीज, स्टीयरिंग, सस्पेंशन स्कैन, अते सारा ही इलेक्ट्रिकल काम बहुत ही तसल्ली बख्श करदे ने। तू पहुंच फिर चैलेंज पंप दे ऑपोजिट, ग्रे बिल्डिंग 54 क्लार्नी रोड, फ्रेंकटन, हैमिल्टन। क्राउन ऑटोमोटिव रिपेयर्स लिमिटेड।